कहीं पसंद इसके बार हो गया पिया तेरा मेरा वो पिया तेरा मेरा बस कहीं चार हो गया पिया तेरा मेरा वो

तुम्हें स्वभाव हो गया तेरा मेरा तेरा मेरा बस चुप के ही चुप के प्यार हो गया तेरा मेरा।

कहीं पसंद इसके बार हो गया पिया तेरा मेरा वो पिया तेरा मेरा बस कहीं चार हो गया पिया तेरा मेरा।

तेरा मेरा पतिया तेरा मेरा बस चुप के ही चुप के प्यार हो गया पिया तेरा मेरा पतिया।